0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुले र जियौ।

0: अनुरोधक दीप जनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होश पवन जाए नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा तागत श्री बलराम कई सरी हो सदबात कई काम राजा धर्म कुमार कई सरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान यानी विदुर कई सरी ज्ञान हवश सुजन मनुन बड़ाले पनी कृति उज्ज्वल होश्रुत सहित का